जुना जुना के भो आँखा खोल न मिच जुना जुना आँखा खोल न जुना आँखा खोल न

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त भित्र?
1: के भित्र? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त मेरो फुलीवाली।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बजे।